0: तीन छोटा यार
1: आई सुना तू यार तू आम सिर के ना मार कुछ वाला दे आ ना तो गोगी ना हम तो पुरवा आई गेम तो ये यार आज मैं तो आ खाऊं ता ने तुम तो डांग गांड ये ये ना दे ओरा खाने से ना तो उन्नरा नोरा दे ना तो बुधुनरा दे ना तो जेट तो मॉक्स बाइक ये हाँ तो हाँ ना पे यार वो दे ना म
2: Oh, oh, oh, oh.